तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन, सुरग मच पयाले, गावन तुदनो रतनो पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावन तुदनो जोध महाबरसूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, सेई तुदनो गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले।

आप हाथ दैल हो उबारी, सर्ब ठौर मोह हो सहाई। दोष्ट दोख ते लिहो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान ने कह मते एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री इस्पान कृपा।

सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया, शब्दों ता गाव हो हरि के रा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदार हो, हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना।

साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै करता तेरै सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा गुरबान किता गुरु विटहो जिस दियाँ हे वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शबद रहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभाग्य कर सुभाग्य शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तदवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तैस कुआ तित करण हद वाजे आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वे सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत सा जिन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पई ओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो ए वस्त जी नह जाए नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा।

श्री वाहे गुरु साहिब जी अड़ा अग्न बराबर तपै पितर बगै खती तनमत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती सतनाम श्री वाहिगुरू जी सोरठ महला पंजवा प्रभु की शरण सगल पहला थे दुख बिनसे सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभु की शरण सगल पहला थे दुख बिनसे सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया।

0: दैर इच्छा पूर्ण हुई चित की इच्छा।
1: चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आसंगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बचहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जजू करियो रक्षा। रख लिहो मोहे रख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चींटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, कट कट के पट पट की जाने। जबद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब करख करत हो कब हूँ, तुम में मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार है, आप आपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कहो कह सदाशिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तोह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज से तजकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर ई कैठा। सगरी सृष्ट दिखाय अचंपव, आजुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संकरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट नह ऐ हैं। रश्या होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहे नहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाश्वत सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारो कहा, दर्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार।

श्री वाहे गुरु साहिब जी दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म हुए प्रभ मेरा हे बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे अपनी शरण राख प्रभदाते गुर प्रसाद किने विरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसै मेरा चीता नानक एक कर अरदास बिसर नाही पूरन गुणतास सुखो टल गुर सेविया एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु जी सुही महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट न तारत

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। वाहे वाह गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।

वाह वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह।

गुरु वा गुरु वा वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय गुरु वाय गुरु गुरु वाय वाय गुरु वाय वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय वा गुरु वा गुरु

गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई।

गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु

वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय

नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावं कल कलेश तन माय मिटावं सिमरो जास विसंबर एक है नाम जपता गनत अनेक है वेद पुराण सिमर सुधा अखिर की ने राम नाम एक आखिर किन का एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी ना आवे काखी एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्व न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछु बिघ्न लागै प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल भला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सबके सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माह समाए प्रभ जी वसह साध की रसना नानक जन का दास न दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन प्रवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तिन सदबलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरे वसे हर नेरे संत कृपाते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह सम्मानी प्रभु कै सिमरन हे चले आसन प्रभु कै सिमरन कमल विघासन प्रभु कै सिमरन अनहद झनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरहे से जन जिन को प्रभु मया नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहों कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगलिया कारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवै तो भारी हर को नाम खिन माय उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी वंदना परे हर का नाम जपत निस्तरे अनक माया रंग तेख न बुझावे हर का नाम जपता गावे जे मार गे जात केला तै हर नाम संग हो सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूट नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन दह आय संघारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्म है मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबूना धोवे हर का नाम कूट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध कै संग जे मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जे पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महाभयान तपत भव काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहां त्रिखा मन तुरिया करकै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर योगत साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਥੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਿਬੇਕੈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਵਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕਉ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਧ ਵਸਾਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨ ਸਹਿ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਕੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬੋਝ।

पत जाए, अष्टपति दास वस्तुले पाशे पावे, एक वस्तु कारण बिखोड़ गवावे। एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा कहो करा करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको की जस साध नमस्कार, जाके मन लागा प्रम मीठा, सर्व सुखता हुमर मूठा, जिस जान अपना हुक्म मनाया, सर्व दोख नानक तिन पाया। अगणत शाह अपनी दे रास, खात पीत वरत न दलास, अपनी अमान कश्म और साह लिया ज्ञानी मन रोस करे, अपनी परतीत आप ही घूवे, और उसका विश्वास ना होवे, जिसकी बस्त से आगे राखे, प्रभु की आज्ञा मन माथे है, उससे चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सर पर हुवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन सह ओ मन पछतावे, जो दी सह सो चलन हार, लपट रहे ते अंधार, बटाओ स्यों जो लावे, नहीं ताको हाथ ना आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटम सुबाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रात हस्ती अश्व बस्तरा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्त्र पग साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पार त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर बुकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी सागत की आरजा साज, बिना कह हो वसूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखा बता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपण के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, रहता वरका शबर कमावत, माननी प्रीत मुख हो गंड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीण, बार भेख न काहु भीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन मैं मरे, जिसके अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरह संसार, जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नानक कौन जन चरण प्राता, करु बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे मन, आपे आप करत निबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव सियानप सकल ते रहत, सबका जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहे असमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमख जप नानक हरि सलोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए, अहं मेव नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति, जे प्रसाद सती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे, जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आड़ पैर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याग ध्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे, तिसे त्याग काथे अवर लुभावे, जे प्रसाद सुख से सोई जय मन, आठ पैर ताका जस गावी जय, जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुक्ता को जस रसन बखाने, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन, सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जब तर गह मान पावे, नानक पासे ती घर जावे, जे प्रसाद अरोग कंचन दे लेवलावो, तिस राम सुनेही, जे प्रसाद तेरा उला रहत मान, सुख पावे हर हर जस कैद, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ठाके, जे प्रसाद को न पहुँचे, मन सासा सिमरो प्रभु चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद अभूखन पहरी जय मन, तिस सिमरत क्यों आलस की जय, जे प्रसाद असवह तस्वारी मान, तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलख तना राग पुरे, प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बणत बनाई, उठत बैठत सद तिसे त्याय, जो एक लख है इहां उहां नानक तेरी रखे, जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आड़ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा रूप, जे प्रसाद तेरी नीकी जा सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कहे, जे प्रसाद सुनहे करण नाद, जे प्रसाद भिखे बिस्माद, जे प्रसाद बोलहे अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना,
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰਸ ਕਰ ਚਲਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਗ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ, ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਉ ਜਾਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਚਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਵਰਾਜ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਮ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਫਿਰ ਹੂੰ ਲਿਆ। ਜੇ

0: सगल निस्तार है अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस मर्म है प्रीत निरंजन दर्श पार त्रय रूप ना पे कह नेत्र साध की टहल संसंग हेत करण ना सुने गाहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोग ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस बैसनो सोजिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत होवै नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाशै केवल भगत कीर्तन संग राचै सब ते जाने आप को मंदा। गुर प्रसाद विखिया पर हरे मन की बासना मन ते सरे इंद्री जित पंच दोग ते रहत नानक कोट म देखो ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न। कर्म कर तो हो वैने कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाशै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपरोक्त कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल ते आगै दुष्ट का संग मन दे बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल गोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्मै सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै। वेद पुराण सिमृत बुझै मूल सूखम है जाने असूल चौवरणा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरणा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावे दिन कोय कर कृपांतर और तारे पस प्रेत मुक्त पात्र को तारे सर्व रोग का औकत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म नानक तिस मिलै जिस लखिया थुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाए सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी पराए। सगल संगातम दास ऐसे जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम्हें तावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद ते नहीं बियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा अमृत तैसी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक हो पुख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जित जित घर राखै तैसा तिन नाव आपे करण करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरे आप होय अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मादे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनास सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम हे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आदम ध्यान धारे कई कोट कब का विचार।

कर कर पावे त्रिण समान कछ संग न जावे बलस कर्मान कुपर करे आस बल पितरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होय जाय पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गौर प्रसाद जा कह मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोण करम करै हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाए निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए ताब इसको सुख नाही कोई जब जाने मैं कुछ करता ताब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत ताब लग नहीं चल नाही चीत जब लग मोह मगर संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्राप कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक को छूटै सैस खटे लख कोठ तावे तृप्त नावे माया पाछै पावे अनक भोग विख्या के करै नह तृपतावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए वटभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहा विचार जैसी जिष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किच कीनो सपने रंग सब ते दूर सब हुके संग बूझे देखे करै विवेक आपे हे कापे हे नेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहे आसमाए आप देसै समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब कछु सका हो करण हार उसते भिन्न कहो हो किछ होए थान तनंतर एक कैसोए अपने चले त्याग करण हार कौत करै रंग पार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरप्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब की ना कोट मदे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर पार नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घाट घाट सुनी श्रवण बखियानी।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुख निहार जा घटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरै संत कै दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाहे नानक संत पावै ताए भीगत पाए संत का निंदक मात ताए संत का निंदक खिंटकन न पाए संत का निंदक मा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावे तास का पी होय मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डांड लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत का दुखी को ना ही ठाव नानक संत भावता लय मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी को वरना राखन हार नानक संत पावे तले उबार संत का दुखी ओ बिललाए जो जल भी हुण मथली तरफड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै जो पाव गिद्ध नहीं त्रापै संत का दुखी छटै केला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदका तुरही पया नानक जो तिस पावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए संत के दुखी की पूजै ना आसा संत का दुखी उठ चलै निरासा संत कै दुख न तृष्टै कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोए साब घाट तिसके हो करणे हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करहो दिन रात तिसे त्याहु सास ग्रास साब कछ वरतै तिसका कीऐ जैसा करे तैसा को थिया अपना खेले आप करणे हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़भागी नानक।

हर हर सिमरन प्राण धार, अनेक पावना छूट निहारे, सिमरत सास भेद विचारे, हर की भगत करो मन मलाए।

आप जपो वरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ, सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाव नानक गुण गाओ तेरी उतर समैल, बिनस जायो मैं बिक फैल, होए अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, छाट सियाण सगली मना, साध संग पावे सच धना, हर पूंजी संच करो बिहार, ईहा सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक

वेद पुराण सिमृत में देख सस्यर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल कहूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल ना पाई गुण अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धारे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद भरम का नास नानक तन्मय हो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिज किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान है करण करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रवते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्थार तिस भावे ता एक ओंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जने आप बुझाए सर पूतिया वरतारा सर्ब नैन आपेखण हारा सगल समग्री जा का तना अपन जस आप ही सुनाया अपन जान खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके मद लिप तो रह है जो कुछ कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावे ता ले सवाए इसते होए सोहो ना ही बुरा उरे कहो किने कश करा आप भला कर तू तदनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संग राच ता की गतम कही ना जाए दूसर होए तो सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस दा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का यह सुभाऊ जन कह संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा

संपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार विमनिकट कर पेख सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद।

हर तन के पर ले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संपत परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुंत कमावत होत उधार आप तरह लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसादु दया प्रवतारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ के उत्सद करो संत मीत सावधानी कागर चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सोहत निधान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होई प्रधान पुरख प्रगट सब लोई

खेम शांत हृदय नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान सृष्टि उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबकै मध सकल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता

क्यों कारुकंत मिलावा होई सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सुही महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच बहती जात कदे दृष्ट ना तारत।